वाहेगुरु बोलो जे पंजा तखता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे प्रथम सरबत।

पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बगसो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान ने ओटिया दी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सब

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर वरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कहज कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणज त्रिपवन महीप सुर नार असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जब लौ नहीं भाग लिलारे उदय तब लौ प्रमते फिरते बहुताए आओ काल कोर समुद्र मै बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछुताए तत् विचार यह मथुरा जग तारन कहो अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो विसर नाही दातार अपना नाम दे गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए गुर सिख हो गुर सिख है पीर पीर हो कोई शब्द सुरत चेला गुरु परमेसर सोई दर्शन दिष्ट त्यान तार गुर मूरत होई शब्द सुरत कर कीर्तन सत संग विलोई वाहे गुरु गुर मंत्र है जप हौं मैं खोई आप गवाए आप है गुण गुणी परोई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै
सिफत खसामदी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सचे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना देश सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना देश सत

श्लोक पवन गुरु पाणि पिता माता तत् महत दिवस रात दई दया खेल सगल जगत चंगे आया बुरे आईया वा चेतर महादू आदमी।

पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जाला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर।

तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान माता ते जापना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दास दास तुदे आगे बिनवता चरण

सिर हाथ तहरे ओ सिर हाथ तहरे ओ आहे गुरु वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह हो निह चल चौर छत पौड़ी वड्डे वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंगा नेक ना जापड़ करतबा जी आंद्र जी सबके जान ला।

0: तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता सलोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जगत।

सवैया आए गहे जब ते तुमरे तब ते कोउ आँख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तोहे बखानियो दोहरा सगल द्वार काओ छाड़ कै गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार काओ छाड़ कै गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शबद गावण आईयां शबदो ता गावहु हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईयां कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईयां सदा कुर्बान कीता गुरु विट हों जिस दियां एह वड़ियाईयां कह नानक सुनहो संत हो शबद तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सभागै कर सभागै शबद वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लगे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुन हो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर।

चित आमण का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग तेग फतेह बिरदगी बैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय।

तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई रखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंध प मेरा सखा सखाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थपे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चूके सब सोग संतापे। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करहो किश मेहर उपावहो, डुबदे पत्थर तारे। जीअड़ा अग्न बराबर तपै, पितर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। असी खते बहुत कमाव दे, अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श लो, हों पापी वड गुनहगार। हर जियो लिख वार न आवई, तू बख्स मिलावन हार। लिख कत हे ना छूटिया, खिन खिन भूलन हार। बखसन हार बखसल नानक पार उतार। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परस आए गुरु का जन।

साहिब जी जब जरिया तब होए पसम तान रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है तन की यह बड़ाई जब जरिया तब होए पसम तान रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई काहे भैया फिर ता जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया ज्यों मधुमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया मरती बार ले हो करिया रहन क्यों दिया देहरी लो बरी नार संग पई आगे सजन सोहेला मार कट लाओ सब लोग कुटुंब पायो आ गए हंस अकेला कहत कबीर सुनहो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआं झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी ब्रह्म सुआ कहत कबीर सुनहो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआं झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी ब्रह्म सुआ वाहिगुरु जी का खालसा।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाण दिख दिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जन त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो चटी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, शीर्षादशाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे सा। सज्जन सच्चा पातशाह, शीर्षादशाह। जिस पास बैठे

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोका ना श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला। बले

शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो। सोथर चित भगत हित भेख धरियो हर नाखस हरियो नख बिदार जियो। शंख चक्र गदा पदम आप कियो शदम।

पासा गुरमुख संगत सबे विचार वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना।

0: अगम अनंत अनाद आद जस कोए न जाने है। शिव बिरंच धर ध्यान नित है जस वेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस है। श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त है बसै। गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन को। हुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कसु न बिचारन को। हर नाम बोहित बडो कल में पव सागर पार उतारन को।
1: संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है। त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिवतार न तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर। गहर गंभीर थात बड सुपर सदा सभ्यत रत्नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। काल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
2: जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन। जेह सतगुर सिमरंत जिदे हर नाम दिनो दिन। जेह सतगुर सिमरंत जिय की तपत मिटावै। जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै। सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर रग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो।
3: जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास। ता ते संगत सगन पाए पौ मन है तुम लिया।

जन सुसहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह सिर साहद जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह। सजन सच्चा पातशाह सिर साहद साह, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी

अब पतियार क्या कीजा, बचनी तोर मोर मन माना, जानकौ पूरन दीजा। हम सार दीन दयाल ना तुम सार,

कह रविदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुरे थे माधव एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा

वाजे पंच शब्द तित करस पग शब्द वाजे कला चित करतारी पंच दूत तुद वसे कीते काल कंट कमार तुर कर्म पाया तुद जन कौसे नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होवा तित करे अनहद वाजे।

0: जित हरिया सबको। सुत क्यों कर रखिए सूतक पवेर सोए, नानक सूत के बना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेहवा सूत कूड़, अखी सूतक वेखना परतरे पर तन रूप। कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाए, नानक आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला। सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए। खाना पीना पवित्र दितों ने रिजक संभाए, नानक जिनी गुरमुख बूझिया तिन्ना।